0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 47 702 V23
1: License number 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

कोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, आपकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5333 पर कॉल कीजिए। 905-456-7733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

0: last days, a broad top, samosa and sweet factory at all leading grocery stores.
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 905 458 6808

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता।

ओंकाराय वसुः ओं ह्रैं कवचाय हुं ओं ह्रौं नेत्रत्रयाय वसुः ओं ह्राः अस्त्राय फट् पठ ध्यानम् वामेकरे वैरवहं महन्तं शरीरं परिशृङ्करमालयाख्यम् दधानमाख्यामाद सुवर्णभरणम् पदीचुरकुण्डलमाञ्जनीयम् नमो भगवते विचित्रवीर हरमते प्रवयकारानलप्रभाद्युरत्तुतापमत्सदेहाय अञ्जनीगर्भसम्भूताय प्रकटविक्रमवीरदैत्य दानवयक्षरासद ग्रहबन्धनाय भूतग्रह प्रेतग्रह पिशाचग्रह शाकिनीग्रह दाकिनीग्रह काकिनीग्रह कामिनीग्रह ब्रह्मग्रह ब्रह्मराक्षसग्रह चोरग्रह बन्धनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यं कथय कथय व्याघ्रमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय सभामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भञ्जन सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून् मापय मापय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मी कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः फट् श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर ॐ फट् स्वाहा एकादश शतवारं कृत्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमन् महाराज।

सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, या अली मदद। और आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, घर संसार, और मैं हूँ आपकी दोस्त मीरा। तो हमारा आपका हर वीकेंड में हम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, सैटरडे संडे को, और शाम जो सैटरडे की शाम जो सभी के लिए बहुत ही सुहावनी होती है, स्पेशली गर्मियों के दिनों में, आजकल के सावन के महीने में। तो आजकल सावन का महीना चल रहा है, और सोमवार जो है, दो सोमवार जो लोग व्रत रखते हैं सावन के महीने के सोमवारों का, तो ये जो है आपके लिए सावन का महीना है। तो जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, शंकर भगवान को की पूजा का पूरा महीना है। तो और झूले पड़ते हैं इंडिया में, तो बहुत ही बढ़िया पूरे बनाए जाते हैं गुड़ के, आप जानते हो पूरे क्या होते हैं। तो खूब फेस्टिव सा, यहाँ भी अभी तो लोग पिकनिक्स करते हैं, सभी लोग पूरे बनाते हैं जिस दिन बारिश होती है, तो इस तरह से अपना मनोरंजन वो बनाए रखते हैं किसी ना किसी तरीके से, दोस्तों मित्रों के साथ वीकेंड में खास करके। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, और साथ में आपने बहुत बढ़िया किस्म की आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर के साथ बढ़िया टीवी चाहिए, और आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, किचन के गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अपनी सिस्टर को बढ़िया सी गिफ्ट लेके देनी है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देखें, और फिर आपको ऑर्डर बुक करना है तो 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स का कॉल कीजिए, वो कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, 416-524-804 आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो एक बार फिर से नंबर ले लीजिए, 416-524-6704, HK मूवर्स। अब अगर लंदन आसपास के इलाके में आप रहते हो, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो गोर रोड पे लंदन में मौजूद है। आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइए, और आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नया जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिएगा। तो अब आपने अगर लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ लेनी है आपको राखी के लिए, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए। आप किचन और बाटल लुगवाक में रहते हैं, घर खरीदना बेचना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, तो नसीब खंड को कॉल कीजिए, 519-546-1260 पे आप नसीब खंड को कॉल कर सकते हैं। आपको लाइव कुकिंग करवानी है, डिनर लंच करना है, तो न्यूली रेनोवेटेड न्यू इंडिया स्वीट रेस्टोरेंट, राखी के लिए आपको मिठाइयाँ लेनी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया भी मौजूद है, और जानकारी के लिए आप 905-814-1780 पर कॉल कीजिए, 905-814-1730 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको 80s की दौर में ले चलती हैं, तो डिम्पल कपाडिया, ऋषि कपूर, आइए ये गीत, तो रोमांटिक सा गीत।

0: भैया एक बार फिर से आपका स्वागत है जल संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आपकी कोई खास पिकनिक होने वाली है या कोई और प्रोग्राम होने वाला है तो आप जरूर हमें बता सकते हो और ईमेल कर सकते हो gharsansarradio@gmail.com, तो हम यहाँ पे अनाउंस कर देंगे। आपका कोई भी कम्युनिटी प्रोग्राम हो तो जरूर बताइएगा, हमारा हम जरूर शेयर करेंगे अपने लिसनर्स के साथ। जो लिसनर्स हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगस्त में ही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था और अगस्त 25-30 साल हो गए हैं प्रोग्राम को चलते हुए। आपकी दया से, कृपा से, स्पॉन्सर्स की दया से, कृपा से, कोऑपरेशन से, तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, टीवी अपनी बहन को लेके देना चाहते हो राखी के लिए, या और कोई गैजेट किचन की बढ़िया बढ़िया, आजकल तो बढ़िया एडवांस गैजेट्स आ गए हैं, रोटी मेकर ये वो, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, किसी तरह का भी आपको बारबेक्यू चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए और फिर आप अपने ऑर्डर बुक कर लीजिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो एच के मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं, तो सारे कनाडा भर में मूव होने के लिए उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-404 416-524-6704 पे आप कॉल कर सकते हो एच के मूवर्स को। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी, आपको टोरंटो के आसपास के इलाके में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कीजिए 416-677-1313 416-677-1313 पे आप कॉल कर सकते हो। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको ये भी बड़ा रोमांचक
1: आओ कि जब तुम साथ

0: हाथों में पलकों पे दिल मिलता रे आना भरी बरसातों में।
1: तो ये जो गाना था बड़ा जैसे बड़ा मीनिंगफुल है, ये आपके लिए उस्ताद रशीद खान की तरफ से पेश किया गया, करीना कपूर शाहिद कपूर जब वी मेट मूवी उसी का ये गाना है। तो बड़ा ही रोमांटिक भी है और साथ में बड़ा मीनिंगफुल भी है। तो मूवी ये जो थी जब वी मेट रियली नाइस मूवी, आपको अगर मौका मिले जरूर देखना, सजेस्ट कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मेरी पसंद आपकी की पसंद आपकी भी पसंद हो, लेकिन कई बार बड़ा एंटरटेनिंग चीज़ होती है। अब अगर आप किसी किस्म की भी आपको आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है बेचनी है कितना वाटर में, तो आप नसीब थिएटर को कॉल कीजिए 519-542-1260 पे कॉल कर सकते हो। तो आइए अब आपको एक और बढ़िया सा प्यारा सा रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। तो राजेश खन्ना आर डी वर्मा।

एक बार फिर से आप सभी का एक बार फिर से घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार। और अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो एच के मूवर को कॉल कीजिए 416-524-8004 416-524-6704। और आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया प्राइस, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी

0: का काम करवाना है, आपकी कार मैन ट्रक नए जैसा बना देते हैं। तो वो रोड पे मजबूर है लंदन में, तो आप मास्टर पोल्यूशन रिपोर्ट डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो आइए आपको एक और बढ़िया प्यारा सा गीत सुनाते हैं। इसमें जो है कि एक सिंगर जो है, एक वो लवर जो है वो थोड़ा प्रेडिकमेंट में है। सुनिए किस तरह की प्रेडिकमेंट है।
1: हाँ, या चुप रहो
0: नीतू कपूर और शशि कपूर
1: क्या है।

आपका स्वागत है घर संसार में। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आप इस प्रोग्राम के जरिए अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो 6477737640। अगर आपके यहाँ शादी है, आपको बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी चाहिए, वॉचेस चाहिए गिफ्ट देने के लिए, तो आप कॉल कर लेना 6477737640। और जब फिर आपने शादी में लोगों को गिफ्ट देना है तो उसमें भी उसके लिए भी आपके बढ़िया बढ़िया आप गिफ्ट दे सकते।

बड़े रीजनेबल प्राइसेस में आप कॉल कर सकते हो आप 647-773-7640। मैं बताना चाहती हूँ कि एक ज़माना था कि पहले पहले लोग ना लड़कियों को ज़्यादा, जैसे कि यहाँ कनाडा में आने के बाद भी लोगों को ये था कि लड़कियाँ ज़्यादा उनको नहीं होना चाहिए ये जो मीडिया के दुनिया में, तो बहुत जैसे जो लड़कियाँ रेडियो प्रोग्राम करती थी 70s में, 80s में, 90s में बहुत कम लड़कियाँ थी। आजकल तो मीडिया के उनकी एजुकेशन हो गई है तो बहुत सारी लड़कियाँ आगे आ गई हैं और बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम दे रही हैं, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करती हैं, बहुत कमाल के रेडियो प्रोग्राम करती हैं। मैं उनके प्रोग्राम सुनती हूँ तो उनको सराहती हूँ कि बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि औरतें आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं आगे, तो ये भी एक बड़ी खुशी वाली बात है। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती थी एक पॉजिटिव नोट। तो आइए आपको ये प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। सारा खान का जुड़ गया।

या तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है. हैव अ वंडरफुल वीक एंड अ सेफ वन. प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड एंजॉय योर टाइम. व्हाट एवर यू डू मस्ट डू सम एक्सरसाइज. गिव योरसेल्फ सम टाइम. अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए अपनी देखभाल करने के लिए. प्रोग्राम बनाना चाहिए, अपने खाने का प्रोग्राम बनाना चाहिए. अगर आप अपनी देखभाल करोगे तो आपके आसपास वाले भी, दुनिया वाले भी आपकी जरूर देखभाल करेंगे. सो इसी नोट के साथ नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने स्वार्थ कला.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट।

0: Freedom's Park में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-7333 पर कॉल कीजिए। 905-456-7733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ।

0: last days of Broader Top Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 905-458-6808
2: पातशाह जसनी कवि बात बेनती चौपाई

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता गृणीये बीजं सूर्यगुं शक्ति

मंत्र श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री प्रवीर हनुमन्मारा मंत्रस्य समचंद्रो भगवान ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री विचित्र वीर हनुमान देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे मारा मंत्र जपे विनियोगः तद करण्यासः। ओम राम अमुष्टाभ्याम नमः। ओम रीं कर्जनीभ्याम। ओम रोमतिमाभ्याम नमः। ओम रीं अनामिकाभ्याम नमः। ओम रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः।

अम्राइं कवचायहं अम्राम नेत्रत्रयाय वशत अम्राह अस्त्राय भट पट ध्यानं वामे करे वैरवहं महंतं शरीरं परित्रिं करमालयाख्यं दधानमाख्यामाद सुवर्णभरणं बदीचुरकुण्डलमाञ्जनीयम् नमो भगवते विचित्र वीर हरमते प्रवयकारान प्रभाजुरत्ताप वत्सदेहाय अंजनी गर्भ संभूताय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस ग्रह बंधनाय भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह शाकिनी ग्रह दाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंधनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यं कथय कथय व्याघ्रमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय सभामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भञ्जना सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून् मापय मापय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्यसिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मी कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रों ह्रः फट् श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर हों फट् स्वाहा एकादश शतवारं कृत्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमन् महाराज।

श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, या अली मदद। और आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, घर संसार, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो हमारा आपका हर वीकेंड में हम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, सैटरडे संडे को, और शाम जो सैटरडे की शाम जो सभी के लिए बहुत ही सुहावनी होती है, स्पेशली गर्मियों के दिनों में, आजकल के सावन के महीने में। तो आजकल सावन का महीना चल रहा है और सोमवार जो है, दो सोमवार जो लोग व्रत रखते हैं सावन के महीने के सोमवारों का, तो ये जो है आपके लिए सावन का महीना है। तो जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, शंकर भगवान को की पूजा का पूरा महीना है। तो और झूले पड़ते हैं इंडिया में तो बहुत ही बढ़िया, पूरे बनाए जाते हैं गुड़ के, आप जानते हो पूरे क्या होते हैं। तो खूब फेस्टिव सा, यहाँ भी अभी तो लोग पिकनिक्स करते हैं, सभी लोग पूरे बनाते हैं जिस दिन बारिश होती है, तो इस तरह से अपना मनोरंजन वो बनाए रखते हैं किसी ना किसी तरीके से, दोस्तों मित्रों के साथ वीकेंड में खास करके। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, और साथ में आपने बहुत बढ़िया किस्म की आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर के साथ बढ़िया टीवी चाहिए, और आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, किचन के गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अपनी सिस्टर को बढ़िया सी गिफ्ट लेके देनी है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वालियर में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देखें, और फिर आपको ऑर्डर बुक करना है तो 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स का कॉल कीजिए, वो कैनेडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, 416-524-804 आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो एक बार फिर से नंबर ले लीजिए, 416-524-6704, HK मूवर्स। अब अगर लंदन आसपास के इलाके में आप रहते हो, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो गोर रोड पे लंदन में मौजूद है। आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइए और आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिएगा। तो अब आपने अगर लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ लेनी है आपको राखी के लिए, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए। आप किचन और बाटल लोग में रहते हैं, घर खरीदना बेचना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, तो नसीब फील्ड को कॉल कीजिए, 519-546-1260, 519-546-1260 पे आप नसीब फील्ड को कॉल कर सकते हैं। आपको लाइव कुकिंग करवानी है, डिनर लंच करना है, तो न्यूली रेनोवेटेड न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, राखी के लिए आपको मिठाइयाँ लेनी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया भी मौजूद है, और जानकारी के लिए आप 905-814-1703 पर कॉल कीजिए, 905-814-1730 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको 80s की दौर में ले चलते हैं, तो डिंपल कपाडिया, ऋषि कपूर, आइए ये गीत, तो रोमांटिक सा गीत।

0: मैं एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आपकी कोई खास पिकनिक होने वाली है या कोई और प्रोग्राम होने वाला है तो आप जरूर हमें बता सकते हो और ईमेल कर सकते हो gharsansarradio@gmail.com, तो हम यहाँ पे अनाउंस कर देंगे। आपका कोई भी कम्युनिटी प्रोग्राम हो तो जरूर बताइएगा, हमारा हम जरूर शेयर करेंगे अपने लिसनर्स के साथ। जो लिसनर्स हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगस्त में ही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था और अगस्त 25-30 साल हो गए हैं प्रोग्राम को चलते हुए। आपकी दया से, कृपा से, स्पॉन्सर्स की दया से, कृपा से, कोऑपरेशन से, तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, टीवी अपनी बहन को लेके जाना चाहते हो राखी के लिए, या और कोई गैजेट्स, किचन की बढ़िया बढ़िया आजकल तो बढ़िया एडवांस गैजेट्स आ गए हैं, रोटी मेकर एंड ये वो, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए या किसी तरह का भी आपको बारबेक्यू चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स.com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए और फिर आप अपने ऑर्डर बुक कर लीजिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं, तो सारे कनाडा भर में मूव होने के लिए उनकी बहुत सारे टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-404 416-524-6704 पे आप कॉल कर सकते हो HK मूवर्स को। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी, आपको टोरंटो के आसपास के इलाके में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कीजिए 416-677-1313 416-677-1313 पे आप कॉल कर सकते हो। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको ये भी बड़ा रोमांचक
1: आओ कि जब तुम साथ

तो ये जो गाना था बड़ा जैसे बड़ा मीनिंगफुल है, ये आपके लिए उस्ताद रशीद खान की तरफ से पेश किया गया, करीना कपूर शाहिद कपूर जब वी मेट मूवी उसी का ये गाना है। तो बड़ा ही रोमांटिक भी है और साथ में बड़ा मीनिंगफुल भी है। तो मूवी ये जो थी जब वी मेट रियली नाइस मूवी, आपको अगर मौका मिले जरूर देखना, सजेस्ट कर सकती हूँ। जरूरी नहीं कि मेरी पसंद आपकी की पसंद आपकी भी पसंद हो, लेकिन कई बार बड़ा एंटरटेनिंग चीज़ होती है। अब अगर आप किसी किस्म की भी आपको आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है बेचनी है कितना वाटर में, तो आप नसीब थिएटर को कॉल कीजिए 519-542-1260 पे कॉल कर सकते हो। तो आइए अब आपको एक और बढ़िया सा प्यारा सा रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। तो राजेश खन्ना, आर डी वर्मा, किशोर कुमार।

0: Traveling to 100 countries, I have learned how to avoid some serious headaches. After a
1: decade. एक बार फिर से घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार। और अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो एचक्यू मूवर को कॉल कीजिए 416-524-804 416-524-6704। और आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया प्राइस, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में है। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप अपनी पसंद कीजिए और फिर अपना ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल करिए 905-7999-0045 पे कॉल कर सकते हो। अगर आप लंदन में रहते हो, आपके लिए बड़ी खुशी वाली खबर है कि अब आपके लिए जो मास्टर कोलिजन की टू वाले हैं वहाँ पे खुल चुके हैं। आपने किसी किस्म की भी कोलिजन का काम करवाना है, आपकी कार वैन ट्रक नए जैसा बना देते हैं, तो गोर रोड पे मौजूद है लंदन में, तो आप मास्टर कोलिजन डिपू .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो आइए आपको एक और बढ़िया प्यारा सा गीत सुनाते हैं। इसमें जो है कि एक सिंगर जो है एक वो लवर जो है वो थोड़ा प्रेडिकमेंट में है। सुनिए किस तरह की प्रेडिकमेंट है।
2: या चुप रहो
1: नीतू कपूर और शशि कपूर।

आपका स्वागत है घर संसार में। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आप इस प्रोग्राम के जरिए अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो 6477737640। अगर आपके यहाँ शादी है, आपको बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी चाहिए, वॉचेस चाहिए गिफ्ट देने के लिए, तो आप कॉल कर लेना 6477737640। और जहाँ फिर आपने शादी में लोगों को गिफ्ट देना है तो उसमें भी उसके लिए भी आपके बढ़िया बढ़िया आप गिफ्ट दे सकते हो बड़े रीजनेबल प्राइसेस में। आप कॉल कर सकते हो आप 6477737640। मैं बताना चाहती हूँ कि एक ज़माना था कि पहले पहले लोग ना लड़कियों को ज़्यादा, जैसे कि यहाँ कनाडा में आने के बाद भी लोगों को ये था कि लड़कियाँ ज़्यादा उनको नहीं होना चाहिए ये जो मीडिया के दुनिया में। तो जैसे जो लड़कियाँ रेडियो प्रोग्राम करती थी 70s में 80s में 90s में, बहुत कम लड़कियाँ थी। आजकल तो मीडिया के उनकी एजुकेशन हो गई है तो बहुत सारी लड़कियाँ आगे आ गई हैं और बहुत ही बढ़िया बात है, और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम दे रही हैं, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करती हैं, बहुत कमाल के रेडियो प्रोग्राम करती हैं। मैं उनके प्रोग्राम सुनती हूँ तो उनको सराहती हूँ कि बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि औरतें आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं आगे, तो ये भी एक बड़ी खुशी वाली बात है। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती थी एक पॉजिटिव नोट। तो आइए आपको ये प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। सारा खंड का जुड़ गया।

तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। हैव अ वंडरफुल वीक एंड अ सेफ वन। प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड एंजॉय योर टाइम। व्हाट एवर यू डू मस्ट डू सम एक्सरसाइज। गिव योर सेल्फ सम टाइम। अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए अपनी देखभाल करने के लिए। प्रोग्राम बनाना चाहिए, अपने खाने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। अगर आप अपनी देखभाल करोगे तो आपके आसपास वाले भी, दुनिया वाले भी आपकी जरूर देखभाल करेंगे। सो इसी नोट के साथ नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने स्वार्थ कला।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

0: This program is a proud member of the Canadian Punjabi Broadcasters Association, CPBA.
1: विजिटर टू कैनेडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% का डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हुणे कॉन्टैक्ट करो 647-400-6862।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callan to chutkara. Bina vyaj nikiyan nikiyan kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100. कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
2: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
3: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 6474006862 और विजिट teamharjinderguild.com, helping you to fulfill your

0: estate plans.
1: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6474088 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-88-12 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप। If you want to know about Supervisor Insurance and their best rates, best plan and best options for your parents and grandparents on 40-45% discount, so contact today 647-400-6862 Harjinder Group.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: चंगी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत चंगी सलाह नाल हुंदी है, ते ऐदां दी सलाह तुसी हर किसी तो नहीं ले सकते। इस करके रीमैक्स गोल्ड रियलिटी दे हरजिंदर गिल नाल अज ही गल करो। चाहे तुसी फर्स्ट टाइम होम बायर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दी भाल विच हो, प्रॉपर्टी बाय और सेल करना चाहुंदे हो, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स विच इन्वेस्टमेंट या लुकिंग फॉर रिटेल यूनिट्स, तां तुसी बिल्कुल ठीक ना सुनिया। Harjinder Gill, with vast variety of marketing, promotions and showcasing your next home deal, Harjinder Gill is the name to call at 647-400-6862.
3: Hey, I'm Katie.
2: Visit teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
4: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo, phir to anu koi nahi kar sakega tang, karza maaf karao. 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना व्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कैनेडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.

0: 00077 647 286 0077 ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਮੀਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
3: Har ek jazbaat ko dua nahi milti. Har ek aarzoo ko zuba nahi milti. मुस्कान सजाए रखो तो दुनिया है साथ, क्योंकि आजकल हालात ये हैं कि आंसू तक को आंखों में पनाह नहीं मिलती। नमस्कार, आदाब सामीन। बहुत से जज्बातों एहसासों को शब्दों में छिपा आपके रूबरू हूँ मैं प्रीत, आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस शो को सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: साड़ी वक्री पहचान,
2: साड़ा वक्रा है नाम, साड़ी कर नहीं सकता कोई रीज।
1: कल्चर ऑफ पंजाब।

ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ। कल्चर ऑफ पंजाब आपको एंटरटेन भी करता है और आपको बिजनेस भी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे तो इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट का हिस्सा बन जाइए। देव तातला को 416-677-0609 दैट्स 416-677-0609 पर कॉल करें और स्पेशल प्रमोशंस का फायदा उठाइए। भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले शोज में आपका बिजनेस भी शामिल हो। कल्चर ऑफ पंजाब बाय देव तातला।

से मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उसकी आंखों के नशे में हम जब से डूबे, लड़खड़ाते हैं कदम और संभल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पे आंखों से फिसल जाते हैं। प्यार में एक ही मौसम है बहारों का, पर कभी कभार यूं ही ख्याल आता है कि लोग मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं।

सुन रहे हैं कल्चर ऑफ पंजाब। एक्साइटिंग एडवर्टाइजिंग पैकेजेस के लिए कॉल कर सकते हैं 416-677-0609, 416-677-0609।

कई बार सदियां बीत जाती हैं उनको मिले उनको देखे हुए और मन यूं ही उदास खुद से पूछता है सोचता है कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था, लोग पढ़ते थे रुक रुक कर उसे, वो अदब की किताब जैसा था, सारी आंखें थी आईने उसके, वो हकीकत था या किताब जैसा था। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर देर का फसाना है, अब तो उसके और मेरे मिलाप के बीच सदियों भरा जमाना है। दिल बार बार खुद से पूछता है कि ना जाने इन दिनों वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने देखा था सदियों पहले से।

जिन राहों से आप अक्सर गुजरते हैं वो रास्ते भी आपके इतने आदि हो जाते हैं कि अगर आप कुछ दिन वहाँ नहीं जाते तो वो भी उदास हो जाते हैं। फिर हैरान परेशान हुए पूछते हैं औरों से कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। समंदर पूछता है कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। वही दोनों जो भीगी रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक, कभी हंसते कभी कुछ गुनगुनाते या कभी चुपचाप बैठे दूर उफाक की गूंज में रोपोश होने वाले सूरज को देखते, आंसू बहाते और लौट जाते। समंदर पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आते, पर समंदर बेखबर अनजान है एक सच्चाई से, और वो क्या है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ट्रैक के बाद। व्हिच यू विल लिसन इन योर वेरी ओन शो कल्चर ऑफ पंजाब ब्रॉट टू यू बाय देवदत्ता।

0: आप ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: है मेरे नबजी, मेरा बिजनेस नीचे चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मिल देख लेने, कोई गल नहीं बनती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
2: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी एड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: You're listening to Culture of Punjab. For exciting advertising packages, call 416-677-0609. 416-677-0609.

0: 32, 55, 80, 98।
1: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: ओ, काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते।
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव, नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।

वेल, इसी के साथ मुझे यानी प्रीत को आज का शो कल्चर ऑफ पंजाब यही खत्म करने की इजाजत दें। बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट देव तातला एट द नंबर 416-677-0609. With that, I sign off. Shall see you again very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी एड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
2: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
3: टॉयलेट जरूर वरतांगे, इसलिए हुणे कॉल करो, असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं अग नहीं लगेगी। शायद
4: अपने परिवार दी रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो, अते यकीनी बनाओ कि ओह ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई highlicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों इक सुनेहा।
5: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
6: Wakey, wakey.
7: Here's wake up time.
6: Now is the time to wake up.
8: Crank up the radio. You're listening to the Dave Toddler Show, brought to you in part by Culture of Punjab.

0: जाने पहचाने अधिक तजर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-456-4161।
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 4567-3381 ते।
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381।

0: लोकेशंस इन जीटीए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: क्या बात है, राजधानी स्वीट्स एक हाउसहोल्ड नाम, सो विजिट करो जरूर तुसी राजधानी स्वीट्स नू। उसे नाल नाल राजवंत कौर दा नंबर बड़ा मशहूर है, क्योंकि जेडे ना बंदे काम वधिया करदे आ ओ अपने आप मशहूर हो ही जांदे ने। वधिया काम करोगे ते थोड़ी एक जेडी वर्ड ऑफ माउथ दी रेफरेंस है ओ इन्नी हो जाएगी, थानू किसी होर चीज़ की लोड़ ही नहीं। सो राजवंत ऑटो होम ते कमर्शियल इंश्योरेंस विच मदद कर रहे ने। ये 25 तो वध कंपनियां नाल डील करते हैं, तो थोनू 30% तक का डिस्काउंट लैके देंगे ने। सो गड्डियां घर की इंश्योरेंस नहीं घट रही, इन्हों कॉल करो, सारा होमवर्क करके वधिया थोनू टॉप दा ने रेट लैके देना। सो राजवंत कौर 647-674-4735 647-674-4735 647-674-4735 तुसी राजवंत उन्होंने नाल जरूर गलबात करो, तो थोड़े लिए बिल्कुल अवेलेबल है। सो गल्लां बातां थोड़े नाल मारदे आ, एंड उस दे नाल नाल थोनू असी बहुत ही जल्द कुछ साडे स्पोंसर्स दे नाल जोड़ांगे। मैं थोनू अज क्योंकि है थोड़ा जिहा वधिया जिहा दिन, फ्राइडे है, कुछ एक की कहिंदे हुंदे आ अपबीट जिहे गाने सुनाउण दी पूरी कोशिश करदा। सो आजो सुणदे आ।